0: www.wanama.org.uk।
1: होशियार रहें, कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

गीत गाते आबशार। ये वादियां उतरिया और कोहसार, यही तो है इंस्पायर एफएम की बहार।

होती है ना आम बारिश बरसती है थोड़ी थोड़ी करके, और एक होती है जोरदार बारिश ऊपर से नीचे, मिनस समाई आसमान से। बादल आसमान ही की तरफ होते हैं ना, इसका मतलब नहीं कि वो ऊपर स्काई है कहीं, मतलब ऊंची चीज यानी बादलों से जो बारिश बरसती। और यहाँ इशारा है वही इलाही की तरफ, कुरान मजीद की तरफ, के कुरानी अहकामात नाजिल हो रहे हैं। फी ही जुलुमातुन, उसमें अंधेरे हैं, वरादुन और कड़क है, व बरकुन और बिजली है, यानी अल्लाह की तरफ से जो वही आ रही है उसमें वईद भी है, वादे भी हैं, डराने वाली आयात भी हैं और होप भी है। मुनाफिकीन का हाल क्या है? यह जालून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, कुरानी अहकामात को सुनकर ये क्या करते हैं, गौर करने की बजाय, तवज्जो से सुनने की बजाय अपनी उंगलियां कानों में दे देते हैं। मिनस सवाई की, क्यों उंगलियां कानों में देते हैं? कड़ाकों के डर से। और ये कड़ाके क्या हैं? ऐसी आयात जिनमें इनका हाल खोल के बयान किया जा रहा था, इनकी मुनाफ़कत खोली जा रही थी, इन्हीं सख्त अहकामात। हजर अल मौत, मौत के डर से, क्योंकि इनका हाल ये था कि हर बात को ये अपने खिलाफ समझते थे। कुरान पाक में आता है यहसबून कुल्ल सैहतिन अलैहिम, हर चीख को, हर जोर की आवाज को ये अपने ऊपर समझते कि हमारी शामत आई। कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका, जो चोर होता है, जिसके दिल में खराबी होती है, जो बदनीयत इंसान होता है या जिसने कोई खराबी की भी होती है, वो हर आहट से घबरा उठता है। मसलन अगर कोई शख्स गलत काम कर रहा हो और आप अचानक उसके पास चले जाएं तो उसकी हालत क्या होती है, हालांकि आपको ये ना भी पता हो कि उसने क्या किया, घबरा उठता है ना। तो चूंकि इनका दिल चोर था ना, इनके दिल में ईमान नहीं था, दिल के मुनाफिक थे, लिहाजा जब भी कोई ऐसी बात सुनते तो इनको फौरन डर लगता कि ये हमारे बारे में आई शामत। इस्लाम के अहकामात को अपने लिए मौत समझते थे, अल्लाह के अहकामात में जिंदगी के बजाय इन्हें अपने लिए मौत नजर आती। हजर अल मौत, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह घेरने वाला है काफिरों को। यकादु, करीब है, अलबर्कु बिजली, यख्तफु अबसारहुम, उछक ले इनकी निगाहों को, इनकी आंखों को, करीब है कि बिजली इनकी आंखें उछक ले, छपट ले। इसीलिए कहते हैं ना कि जब बिजली चमक रही हो तो क्या ना करो, उसकी तरफ ना देखो, क्यों? नजर जाने का अंदेशा होता है, जैसे मना करते हैं कि सूरज की तरफ ना देखो। तो करीब है कि बिजली इनकी निगाहों को उछक ले, क्योंकि इनकी निगाहें कमजोर हैं, इन्हें हक नजर नहीं आ रहा, इसलिए ये इस्लाम के नूर को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। कुल्लमा अदा अलहुम मशौफी, जब भी उनके लिए रोशनी करता है यानी उनके लिए रोशनी होती है, वो उसमें चल पड़ते हैं। और मशी कहते हैं आम रफ्तार से चलने को, तेज दौड़ने के लिए सही होती है। सही कौन सी होती है? जैसे उम्रे पे जाते हैं तो सही में कैसे चलते हैं? तेज चलते हैं। लेकिन मशी कहते हैं नॉर्मल रूटीन से चलना, यानी कुरान का जब कोई ऐसा हुक्म आता है जिसमें इन्हें अपने लिए कोई फायदा नजर आता है तो ये क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए बज़ाहिर उस पर अमल कर लेते हैं। वह इज़ा अज़लमा अलैहिम, और जब उन पे अंधेरा होता है, मुश्किल वक्त आता है, कामू, वहीं खड़े हो जाते हैं। मसलन किसी जंग में शरीक होने के लिए कहा जाता है तो ये आगे नहीं बढ़ते। वलौ शा अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता, लज़हब, अलबत्ता ले जाता, बिसमइहिम, इनके कानों को, व अबसारहिम, और इनकी आंखों को। अल्लाह इनके कान और इनकी आंखें ले जाता, यानी इनको बहरा कर देता, लिटरली बहरा, डेफ हो जाते और अंधे हो जाते, इनको कुछ भी नजर ना आता।

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
2: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
1: Aur usse mujhe apna wo scene yaad aa jata hai jab Dubai mein se main ja raha tha Pakistan aur wahan se kuch mehrban baithe shalwar kameezon wale. और वो पर्सनल हाइजीन का उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. कई लोग तो उसमें ऐसे भी थे जो लग रहा था उमरा करके आ रहे हैं लेकिन उनका निस्फ ईमान से क्या ताल्लुक. ठीक है जी. और साफ़ सुथरा होने से खुशबूदार खुशबू लगाने से हालांकि वो जिसके लिए जाते हैं जिसको मानते हैं उनके बालों के पट्टे उनकी खूबसूरत आँखें उनकी खुशबू दंदान जो मुबारक जो हैं सारी चीज़ें खूबसूरत खुशबू लगाने वाले और जो कहते हैं कि क्या इस शख्स ने नहीं सुना उस चीज़ के बारे में जिसको कंगा कहते हैं सब करने वाले लेकिन वो कुछ नहीं करते. तो मैं एक साहब आए मैं अपना सामान कुछ चप्पल लेने के लिए कोई भी चीज़ निकालने के लिए उठा तो उन्होंने वो भी कुछ अपना सामान लेने के लिए ऊपर से कोशिश कर रहे थे और मेरा सामान मेरे सर के ऊपर पड़ा हुआ था उसमें जो कैबिनेट होता है. तो मैं उठा तो वो कहीं अपना सामान उसी कैबिनेट में से निकाल रहे थे तो उनकी बगल जो थी ना मेरी नाक के कहीं करीब आई और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही क्योंकि हम चकरा कर अपनी ही सीट पर बैठ गए और वाहिद चीज़ जो मेरे मुंह से उस वक्त निकली वो क्योंकि आप जहाँ के होते हैं एक्चुअल चीज़ वही आपकी निकलती होती है. अंग्रेज़ी आप भूल गए फारसी पश्तो पंजाबी सारा कुछ मैं भूल गया और मेरे अंदर से एक आवाज़ आई मुँह से भी निकल गई ओ जालमा मार सुटी आई. सो क्या करें फिर हम बेचारे कोशिश करते हैं हेंगे और फटकड़ियाँ कम किया करो और फटकड़ी अलम ALUM अलम रंग बरसे और अलम तरसे यही वाले फिर हमारे मसले हैं कि जी सब को रंग बरस रहा है लेकिन हम अलम जो है वो तरस रहा है कि जी हम पे भी कोई रंग बरसे.
3: तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ रहने का अपने सवाल पूछने का अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू साथ साथ हमको देने का. जैसे हमने आपसे वादा किया था जी कि ये फ़न लिस्नर आज़ाद शो होगा तो हम आपका जो फ़न है वो साथ साथ हम लेकर फिर रहे हैं. आप सिर्फ लेने वाला बनना है अपने फ़न जो है ना अपने अपनी हाथ जो है कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला जो हाथ है लेने वाला नहीं देने वाला हाथ आगे बढ़ाइए और देते आप आएंगे देने लेकिन थाली साफ करके हम उसमें कोई अच्छी सी चीज़ आपको डाल कर देंगे. 9725019390 को मेहरबान हमारे साथ करते हैं उनसे बात. रेडियो आज़ाद यू ऑन द एयर.
4: सलाम अलैकुम
3: जी वालेकुम सलाम.
4: अगर आप इस फेज ऑफ लाइफ में अभी हैं

0: आपको लगता है कि लोग अभी भी किसी एक दो चीज़ों पे आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं?
1: हाँ जी, देखें लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, इंसान अपनी समझ के मुताबिक समझता है। वो अगर उसको सीधी सच्ची सादी बात की समझ ही नहीं है, वो जिसको सीधी सच्ची और सादी समझता है उसके लेंस से मेरी बात को सुनता या समझने की कोशिश करता है। इसीलिए मैं भाईजान शेक्सपियर जो थे वन ऑफ अ काइंड, उनकी वो बात कि आई एम आंसरेबल फॉर व्हाट आई सेड नॉट व्हाट यू अंडरस्टूड। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो चीज़ उन्होंने देखी नहीं, कभी महसूस नहीं की, कभी उनके साथ हुई नहीं, तो मैं ये कैसे एक्सपेक्ट करूं कि वो चीज़ें भी समझ जाएंगे? तो इदराक की सीढ़ियां आहिस्ता आहिस्ता लोग चढ़ते और समझते हैं। आप उनके साथ लंबे अरसे तक रहते हैं, हर आदमी आपको वो कलर देता है जो ज़िंदगी और दुनिया उसने देखी। तो वो जैसे उसको जो रंग नज़र आता है, उसकी आंखें जैसी हैं, वो जैसे कलर को परसीव करता है, वो वैसा रंग आपको देता है। आगे जाकर कहीं ना कहीं वो उसकी एक्सेप्शन बनाएगा, तब तक आप उसकी ज़िंदगी में और सोच में रूल हैं। लेकिन लॉन्ग रन में भी अगर वो ऐसे ही करता रहा और आप एक्सेप्शन हैं और आप डिफरेंट हैं और उसको फिर भी उसी कैटेगरी में डाल रहे हैं, तो कुछ अरसे के बाद वो आपके साथ और आप उसके साथ नहीं रह पाएंगे। तो इसी तरह ज़िंदगी में घोड़े और गधे अलहदा होते हैं, इसी तरह ज़िंदगी में कौन आपके साथ है और किसने रहना है और किसने नहीं रहना, इट इज़ परफेक्टली फाइन टू बी मिसअंडरस्टूड। बल्कि कई लोग अभी तक बहुत सारी बातें जो कभी उन्होंने सिर्फ किताबों में, फिल्मों में, नॉवेल्स में या किसी से सुनी सुनाई हैं, उसके मुताबिक वो चीज़ों को लेते हैं, ना कि उस चीज़ों को प्रैक्टिकल लें। ये जानने के बावजूद कि आई एम इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग सेंस हमारी लाइन है, और ये बताने के बावजूद कि मैं कोई भी चीज़ बैलेंस से बाहर ना आपसे कहता हूँ ना करता हूँ, लेकिन उनका बैलेंस, उनकी बात, उनकी सोच, वो एक टोटली और उनकी अपनी कॉन्टेशन है, उसके मुताबिक अगर वो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, इतना भी बहुत है। वक्त पे जाके अपने अपने जर्नी के मुताबिक, अपने अपनी जो ज़र्फ़ है उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आएंगी। कईयों को इससे बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, कई को इससे लीड लेके कोई और ऐसी बात समझ आ जाएगी जो शायद एंगल अभी मिसिंग है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के साथ होती हैं, और लोग बहुत से भी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने जब देखा है, जब मैं लोगों से बात कर रहा होता हूँ, जब मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा होता हूँ, तो मुझे उनकी आंखों के अंदर उनके ब्रेन का कनेक्शन बिल्कुल नज़र नहीं आता। ये सब नज़र आ सकता है क्योंकि वो सिर्फ आंखों से आपको देख रहे हैं, लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम सुन नहीं रहा, वो समझ नहीं रहे, वो अपनी बात और अपना मसला, अपनी तकलीफ और अपनी अगला जो उसने क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है उस पर उनका ध्यान है। दे आर नॉट लिसनिंग। ये हमतन गोश होने वाली बात वैसे किसी ने नहीं की, दैट आई एम ऑल ईयर्स। तो इसका मतलब है मैं पूरे का पूरा दिलो जान से कान बन के आपकी बात सुन रहा हूँ। उस सुनने से ही, यही एक्टिंग है, यही अंडरस्टैंडिंग है, कि आप सुनने से ही आपके दिल में जो भी जज्बात पैदा होते हैं उसके मुताबिक आपके अंदर सच, या ये सच है या नहीं है। तो एक आदमी सच सुनने, सच बोलने के लिए आया ही नहीं है, सच की उसकी वैल्यू और कदर है ही नहीं, वो उस पर यकीन ही नहीं रखता, तो अंडरस्टैंड कैसे करेगा? समझदारी में या समझने में तो खराबी हो ही जाएगी ना। बट आप लेवरेज देते हैं, लोगों को चांस देते हैं, एक दो तीन, और उसके बाद कितना वक्त है आपके पास, रिश्ता क्या है उनसे, काम क्या करते हैं आप उनके साथ, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए या रिश्ते लंबे चलाएंगे आप या नहीं चलाएंगे या कम चलाएंगे। तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग जो है अलाउड है, लेकिन कुफर अलाउड नहीं है। जब चीज़ सच आपके सामने आ जाए और अपनी ईगो की वजह से या अपनी वीकनेस की वजह से या आप एक्सपोज ना हो जाएं की वजह से इस किस्म की बातें अगर आप करते हैं तो फिर आप कभी नहीं सीखेंगे। तो वो वाली जो चीज़ें हैं वो एक्सक्यूजेबल नहीं है।
0: अच्छा, मैं ये सोची थी, जब हमारे पेरेंट्स का ज़माना इतना पुराना भी नहीं है, जो चलो मेरे दादा दादी का ज़माना के लिए, वो लोग जब कोई मसला होता था तो वो लोग सिर्फ उस मसले को सामने रख के उसका हल निकालने की कोशिश करते थे। अब जो मैं रिसेंटली ऑब्जर्व कर रही हूँ कि या तो इनफ्लक्स ऑफ टू मच इन्फॉर्मेशन एंड टू मच नॉइस अराउंड अस, हम लोग इतने कंफ्यूज हैं कि हमने इनकंसिस्टेंसी को, उसको एक्साइटमेंट का दर्जा दे देते हैं। अगर कोई स्टेबल नहीं है तो हम कहते हैं, अगर कोई इंसान स्टेबल आपको मिल जाता है हम कहते हैं ये तो बोरियत हो गई है। अगर कोई इंसान एफर्ट डाल रहा है किसी चीज़ में हम कहते हैं कि ये तो डेस्परेट है। अगर कोई चीज़ टाइम दे रहा है कोई इंसान तो हम कहते हैं कि ये तो इसकी अपनी कोई नीड्स हैं, ही इज़ बीइंग नीडी। तो ये जो हम, आप कहते हैं ना इंसान मीनिंग मेकिंग मशीन है, हम लोगों ने चीज़ों के अंदर से मीनिंग निकालने का जो ये काम शुरू कर दिया, इसको अपने जहन में कॉम्प्लिकेट किया पहले, फिर अपनी जिंदगी में कॉम्प्लिकेट किया। तो इस चीज़ों को मीनिंग मेकिंग मशीन जो हम लोग कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस में और रिलेशनशिप में और सिचुएशनशिप्स में, इन सब में कैसे मीनिंग को डिराइव करने को सिंपल प्रोसेस में ढाला जा सकता है।
1: जो एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि जो इंसान, जैसे आप कहते हैं कि मीनिंग मेकिंग मशीन है, तो हम अपनी मर्जी के चीज़ों में से मीनिंग निकाल लेते हैं, तो कैसे हम ऐसा माइंडसेट लेके आएं कि वो मीनिंग ना निकाले? तो ये नहीं हो सकता। इंसान अगर मीनिंग नहीं निकालेगा, आप समझें, देखिए रब कहता है कि जी किसी की टो में मत रहो, नुकसान में रहोगे, तकलीफ में रहोगे, यानी कि किसी दूसरे के बारे में क्यूरियस ना हो, उसके शब रोज़ के बारे में, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, किसके साथ मिलकर करते हैं, उनकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, उनके पीछे लगे रहने से बाज रहो, क्योंकि ये मॉर्बिड क्यूरियोसिटी है दूसरे बंदे के पीछे जो आप कर रहे हैं। असल में मैंने तुम्हें क्यूरियोसिटी दी है अपने बारे में जानने के लिए, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, अपने खालिक को समझने के लिए, अपनी मखलूक इर्द गिर्द समझने के लिए, अपना रास्ता बनाने के लिए, अपना मकसद ढूंढने के लिए मैंने तुम्हें तजस्सुस पैदा किया है, ताकि तुम आगे बढ़ सको, ज़िंदगी का कोई मकसद रहे, एक्साइटमेंट रहे। लेकिन हमारी एक्साइटमेंट, हम दूसरे लोगों की ज़िंदगी, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या है, मेरे पास वो क्यों नहीं है, इससे आपको मना किया गया। बिल्कुल इसी तरह मीनिंग मेकिंग मशीन तो इंसान है, अगर मतलब ही नहीं है, ज़िंदगी का मतलब नहीं है तो फिर क्यों जीना है, रिश्तों का मतलब नहीं है तो फिर क्यों रिश्ते बनाने, औलाद का मतलब नहीं तो फिर क्यों पैदा करनी, हर चीज़ का अगर खालिक के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो फिर ये इतनी तकलीफ़ परेशानी उठाने की और करने की क्या ज़रूरत है। तो ये समझना है आपने कि मीनिंग मेकिंग तो नहीं जाएगी, ये इंसान मीनिंग बनाता है तो वो इंसान है, जानवर मीनिंग नहीं बनाता तो वो जानवर है, फाइट एंड फ्लाइट के मोड में बेसिक इंटेलिजेंस है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की डिमांड ये है कि आप मीनिंग बनाएं, लेकिन कौन सा मीनिंग, वो मीनिंग जो असल मीनिंग है, जैसे मैंने क्यूरियोसिटी का ज़ात के अंदर मीनिंग होना और उसका रिजल्ट ओरिएंटेड होना और उससे फ़ायदा उठाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना, ये मीनिंग है। लेकिन उसी का गलत मीनिंग निकालना और उसके रिजल्ट्स आप देख लीजिए क्या है लोगों की ज़िंदगी में, और तकलीफ़ परेशानी कितनी ज़्यादा है। तो ये मीनिंग कहाँ से आएगा, जब मकसद क्लियर होगा। मकसद कैसे क्लियर होगा, जब माइंड क्लियर होगा। माइंड कैसे क्लियर होगा, जब आप किसी की सुनेंगे। किसकी सुनेंगे आप, जिसने आपको पैदा किया। बीच वाले ठेकेदारों की बात नहीं हो रही है जो आजकल मिलते हैं, उस किताब को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो भी आपकी अपने अपने मज़हब की किताब है, वो सारी एक ही जगह पे एंड में आपको कन्वर्ज होती हुई नज़र आएगी। उधर से आप राइट एंड रॉन्ग लेंगे, वहाँ से आप ज़िंदगी का मकसद लेंगे, गाइडलाइंस लेंगे, और फिर जो जिस ज़माने में भी आप हैं, उस ज़माने में एग्जिस्ट करते हुए, उस ज़माने के साथ चलते हुए, आप अपनी ज़िंदगी का मकसद और अपने इर्द गिर्द के मकसद के लोग उठाएंगे। तो ये जब आप करेंगे तो मीनिंग सीधे होंगे। जहाँ तक ये बात कि अगर कोई बंदा किसी से आप मिलते हैं, कोई रिश्ता होता है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं तो आपको लगता है कि वो डेस्परेट है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, लेकिन क्या वो एफर्ट बैलेंस से आउट है? अगर वो बैलेंस से आउट है, बहुत ज़्यादा एफर्ट हो रही है, लव बॉम्बिंग जिसे आप अभी बनाया था वो हो रही है, या मकसद के साथ के मुताबिक मिलना जुलना चाहना और दोनों क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस करके आप साथ चल रहे हैं। अब ये बात कि ये मैकेनिकल हो गया, बिल्कुल नहीं, ये कंसिस्टेंसी हो रही है। लोग जो कहते हैं जी कि कंसिस्टेंसी इज बोरिंग, बिल्कुल भी नहीं है, उन लोगों का दिमाग जो है वो अपने काबू में नहीं है। असल में जब आपका इमेज बिल्ट हो जाता है एक चीज़ का, एक ब्रांड का इमेज बिल्ट हो गया है कि जी उसका क्लास है एक, तो उसी के तो सारे पैसे हैं, फिर उसमें वो इनोवेशंस करेंगे, चीज़ें करेंगे, रिफाइनमेंट बढ़ती जाएगी, एक्सेलेंस बढ़ती जाएगी, तो वो और ऊपर जाएगा। इसीलिए ब्रांड्स की क्लासिफिकेशंस हैं, उसके हिसाब से यू गेट व्हाट यू पे फॉर, और उसके हिसाब से आप उस ब्रांड से एसोसिएट करते हैं। एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ। तो इंसानों में भी यही होता है, किस इंसान का कितना रिफाइंड जौक है, उसके क्या शौक हैं, उसके क्या रिश्ते हैं, और वो क्या किस तरफ किस रास्ते पर है, और आप उस रास्ते पर हैं कि नहीं। ये जो आपका पिछला वाला क्वेश्चन था कि क्या अभी भी इस उम्र में और ये सारे काम करने के बाद भी आपको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो ऑफ कोर्स करते हैं, क्योंकि वो अपने लेवल से मुझको देखने की और मेरी बात को समझने या करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कई चीज़ें क्वालिफाई नहीं करते और ऊपर से बात को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर की अगर आपको ऐसी इंग्लिश की लैंग्वेज बोलना चाहते हैं जिसके बेसिक्स आपको वर्ड्स नहीं आते, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं आती, उसके अंदर इमोशन डालना नहीं आता, उसको आप इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, अपने साथ मिलाकर आप पर्सनलाइज नहीं कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे उनके। सिर्फ किसी की बात लेकर किसी जगह पर लगा देना या चिपका देने से आप अकलमंद नहीं हो जाते कि रूमी ये कहता था, उसका मतलब क्या है। रूमी की बात के 150 कॉन्टेशन हो सकते हैं, किस टाइम फ्रेम में कही गई, किस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में कही गई, वो किस लेवल मजाज के लिए कही गई, हकीके के लिए कही गई, वो इंसान के लिए कही गई, रब के लिए कही गई, क्या है। तो صرف لگا دینے سے آپ عقل مند نہیں ہو جاتے. یہ 700 سال پرانی ایک بات اٹھا کے لگا لی تو اس سے کہیں آپ عاقل اور بالغ ہو جائیں گے, اور اب آپ زندگی میں ساری چیزیں ایسے ہی کرتے ہیں. ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے جب تک آپ وہ جی کر یا کر کے نہیں دکھاتے. تو یہ پوائنٹ آپ کو بہت ہی, دونوں پوائنٹ بہت ہی ویلڈ تھے, لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چیزوں کو بس بیلنس میں رکھنا ہے ہمیشہ. بیلنس میں کیوں؟ کیونکہ یونیورس بیلنس میں چلتی ہے. بیلنس میں کیوں؟ کیونکہ بیلنس کے اوپر اور نیچے جو لمٹس لگائی جاتی ہیں, رب کہتے ہیں لمٹس کے باہر مت نکلنا, یہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. کیونکہ اس کے اوپر کی لمٹس میں گردن کٹا بیٹھو گے اور نیچے کی لمت میں ہاتھ کٹا بیٹھو گے, اس لیے درمیان میں رہو. یہ سیف ہے آپ کے لیے, میانہ روی, درمیانہ راستہ. تو اسی لیے رشتوں میں بھی اتنا محبت میں آگے نہ نکل جائیں کہ پھر وہ نفرتوں میں اور دشمنی میں بدل جائے. معین حد ہے ہر چیز کی, اس کے بیچ میں رہیں تو لانگ رن میں آپ جائیں گے. کچھ لوگ بہت اتھرے ہوتے ہیں, ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے, بہت نوزی ہوتی ہے, ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جن سے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو زندگی میں سیکرٹیو نہیں ہونا, زندگی میں پرائیویٹ ہونا اور بات ہے, سیکرٹیو ہونا اور بات. کسی نے بتایا نہیں ان کو. ایک بہت بڑی ہستی کی لائن ہے, جو انسان اپنا راز چھپا گیا وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا. راز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سی آئی اے, کے جی بی یا آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں, وہ خام خی آپ پہ لگا دیں گے کوئی نہ کوئی فتویٰ یا کوئی اور بات. اس کا مطلب راز یہ کہ آپ کا ڈیپسٹ ڈارک جو ڈیزائر ہے, ڈیپ جو آپ کی ڈیزائر ہے وہ کیا ہے, ڈیپسٹ ڈارک سیکرٹ جو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے کہ میں یہ چیز کرنا چاہتا ہوں, میں اس راستے میں کے تار اندر جانا چاہتا ہوں, یہ سب. اور اس راستے پہ جب آپ ہوں, ہر وقت اس کو وربلائز نہیں کرنا ہے, اس کو اپنے اندر رکھنا ہے, چیزوں کو اپنے اندر رکھ سکنے کی طاقت رکھنی ہے, جذبات کو, احساسات کو, سوچوں کو, وقت کے مطابق. کسی نے کیا کیا, کیوں کیا, سبجیکٹو آدمی کبھی بھی آبجیکٹو آدمی کی بات نہیں سمجھ سکتا. رب اسی لیے آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے تھرڈ پرسن کے طور پہ, آبجیکٹو ہو کے بتایا جا رہا ہے. تم کا مطلب صرف تم نہیں ہو, تم کا مطلب ایک عالم ہے, تم کا مطلب ایک قوم ہے, تم کا مطلب امہ بھی ہو سکتی ہے, تم کا مطلب ہم اور آپ بھی ہو سکتے ہیں. اور کبھی جنرلائز بھی کیا جا رہا ہوتا ہے, ہم وہ نہیں ہوتے, لیکن کبھی ہم وہ تھے بھی, کبھی ہم وہ ہو بھی سکتے ہیں. تو اس طرح جب آپ چیزوں کو دیکھیں گے, اسی لیے شارٹ سائٹڈ آدمی فور سائٹڈ آدمی کی بات نہیں سمجھ سکتا, مس انڈرسٹینڈ ہی کرے گا, تھوڑا ہی سمجھ پائے گا. انڈرسٹینڈنگ وقت کے ساتھ ساتھ, ایکسپیرئنس کے ساتھ ساتھ, ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ, استاد کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ, رب سے سیکھنے کے ساتھ ساتھ, اپنے آپ سے سچ بولنے کے ساتھ ساتھ, اپنے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ سکنے کے ساتھ ساتھ, اپنے ڈیول انسائڈ جو ہے اس کو ہینڈل کرنے کے ساتھ ساتھ, اور دا اینجلز انسائڈ جو ہیں اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے ساتھ, اور پھر یہ اوپر نیچے کا ایک خوبصورت سا سسٹم ہے, اس کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے. یہ ایک رب نے ہم لوگوں کو مشکل چیز دی ہے. کیوں دی ہے؟ کیونکہ یہ ہم ہی کر سکتے ہیں, اس لیے نہیں کہ ظلم کیا گیا ہے ہم پر, اس لیے کہ ہم ہی یہ اٹھا سکتے تھے, اس لیے کہ ہم ہی یہ دنیا میں انوینشنز ڈسکوریز کر سکتے تھے, اسی لیے ہم چاند تک اور آسمانوں کو کھول سکتے تھے, اسی لیے کہ ہمارے اندر یہ سارے پوٹینشیل ہیں, لیکن ہم بیر منیمم پہ اس کو استعمال کر کے بہت ہی نچلے لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں. جو اوپر کے لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں ان کو ہم کبھی تکلیفیں بھی دیتے ہیں, تو وہ بھی ان کی خوبصورتیاں ہوتی ہیں. کیا نام تھا نیپولین بھائی صاحب کا جنہوں نے کہا تھا, لائف وداؤٹ اسکارز از اے شیلو لائف. تو اگر آپ کو کچھ چرکے لگے ہیں, تکلیف ہوئی ہے, کٹس لگے ہیں, کوئی بات نہیں, یہی وہ کٹس ہیں جو کول کی مائن میں, کوئلے کی کان میں, ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر کے اوپر, اسپیسیفک پریشر کے اندر ایک کوئلے کو ہیرا بنا دیتی ہیں. اور پھر ایوری کٹ اے ڈائمنڈ ریسیوز ایڈز اے نیو ڈائمینشن ٹو دا لائٹ دیٹ از پاسنگ تھرو اٹ, میکنگ اٹ مور پریشس. تو وہ میں ہوں, آپ ہیں, ہم ہیں, میں ہی کیوں, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. رونا دھونا بند کریں, رونے دھونے سے ڈب ڈبائی ہوئی آنکھوں سے آپ نظارے نہیں دیکھ سکتے. پچھلی باتیں, پرانی باتیں, یہ ایکسپیرئنس ہے جو راستے میں آئے. آپ نے بہت بڑے بڑے بلنڈرز کیے ہیں. جب بھی مجھے لوگ کہتے ہیں جی میں کیوں, میرے ساتھ کیوں ہوا, میں ان کو کبھی کبھی جو اگر قریبی ہیں تو بتاتا ہوں, کئی لوگوں کے سامنے خامخواہ ہر وقت برا بننے کی کیا فائدہ ہے, لیکن کبھی کبھی میں کہتا ہوں آپ بیٹھ جائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اس لیے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے, یہ قدرت کے قانون توڑے ہیں, یہ برین کے قانون توڑے ہیں, یہ ریزن کے اور لاجک کے قانون توڑے ہیں, یہ بیلنس کے قانون توڑے ہیں, اسی لیے آپ ہی ہیں نا, اور کون ہے, کس کو دیتے اور. کوئی فیوریٹ چائلڈ نہیں ہے. کوشش جو کر رہا ہے اس راستے پر کوشش کر رہا ہے, تھک رہا ہے پھر چل رہا ہے, اٹھ کے پھر ایمان اپنا مضبوط کر کے روز घटता बढ़ती हुई चीज़ को उठा कर चल रहा है वही है फेवरेट, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है इसलिए। तो काम बहुत सिंपल और सादा है, ठीक है। अब मेरे पास वक्त कम है और मैं चाहता हूँ कि आपको ना थोड़ा सा, क्योंकि हमने म्यूज़िक का वादा किया था, वो भी आपके साथ करें। और मैडम जी, आपका आज का क्वेश्चन भूला नहीं हूँ मैं, सवाल बहुत अच्छा था, टफ लव का कॉन्सेप्ट। अगला शो शुरू उसी से करेंगे हम, ये जो हमें 10 years of 10 सीरियसली इट वॉज 10 days ऑफ साइलेंस एंड सॉलिट्यूड के बाद जो अगला शो होगा उसमें यहीं से शुरू करेंगे टफ लव का, बिल्कुल बेसिक करके आपको समझाऊंगा व्हाट इज टफ लव, हाउ टू अप्लाई इट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ये बेसिक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अभी भी बता सकता हूँ वक्त कम है, लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा, मेरा ध्यान जो है टाइम पर हो जाएगा और आजकल हम टाइम की पाबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप तमाम लोगों का इस खूबसूरत 2 घंटे के लिए जो हमने आपके साथ गुजारे। ये गांधी साहब ने जब मुझे कहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, चप्पल पहनते हुए उन्होंने कहा था आज़ाद साहब तो 2 घंटे जो हमने आपके साथ गुजारे बड़े खूबसूरत घंटे थे। तो मैंने कहा सर नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट, और दोबारा भी हम मिलेंगे। तो फिर जब मैं उनसे मिला कुछ सालों का, मैंने कहा सर बड़े दिन हो गए, लोग भी चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू किया जाए। तो आगे से मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं, मुस्कुराती हुई आवाज़, उनकी बड़ी एक कमाल किस्म की मिस्चीवियस सी स्माइल उनके चेहरे पर रहती है जब भी मुझे मिलते हैं, जब कोई बात करते हैं तो मेरी तरफ देखते हैं, तो कहते हैं कभी ऐसा हो सकता है कि हम इंटरव्यू के बगैर भी मिलें मैंने कहा सर बिल्कुल हो सकता है, एंड देन वी मेड श्योर कि दैट हैपन्स मे बी आफ्टर फ्यू ईयर्स, बट येस इट इज़ ऑलरेडी हैपन्ड। तो इसी तरह ये जो मुश्ताक है ना, जो इश्तियाक है किसी से मुलाकात का, ये सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत कर देता है। आप सिर्फ मुलाकात के काबिल हों और उसको खूबसूरत करने के काबिल हों और अपनी ख्वाहिशात को पीछे छोड़ें, आप जैसे दुनिया को देखना चाहते हैं, जैसे दुनिया को होना चाहिए के बजाय, वो मोमेंट अगर आप जी लेंगे ना, कुछ मोमेंट की ज़िंदगी है सारी और वो मोमेंट किसी के पास नहीं है। लोग बड़े तहीदा मन तहीदा खाली हाथ हैं सारे, इसीलिए वो कुछ दे नहीं पा रहे, हर बंदा लेने के चक्कर में है। लेने के सोचते रहेंगे आप अगर हर वक्त, तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। देने पे ध्यान दीजिए, मोमेंट खुद ब खुद बन जाएंगे और वही मोमेंट आपकी ज़िंदगी का कुल सरमाया, कुल असासा, कुल एसेट, टोटल एसेट एंड में निकलते हैं आपके, ग्रैंड टोटल उसका वो बनेगा, यही जितना आपने कंट्रीब्यूट किया और जिस जहन से, जिस एटीट्यूड से किया है आपने, लंबे अरसे के लिए और ज़्यादा मोमेंट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है जी। कुछ अशार आपके नज़म के आखिर में आपको पेश करते हैं और उसके बाद एक छोटा सा ट्रैक, क्योंकि ज़िंदगी आपके इख्तियार में है जी, रब ने आपको कंट्रोलेबल फैक्टर्स का कंट्रोल दिया है, इन्हीं को कंट्रोल करके आपकी ये ज़िंदगी खूबसूरत होगी। कोई मसीहा नहीं आने वाला है, आप ही ज़िंदगी के मसीहा हैं, आप ही वो मौजज़ा हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप ही वो कमाल हैं जिसका कब से आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई जमाल वाला आएगा और अपने जलाल से आपकी ज़िंदगी में कमाल पैदा कर देगा। आप ही वो कमाल हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में जमाल आना है और जिसके आपके काम में जलाल आना है और जिससे आपने ये एक्सेलेंस अचीव करनी है। आ चुके हैं आप, खुद पर ईमान ले आइए कि आप डॉन अपॉन जो है ना, ये जब आपके ऊपर ये बात होगी कि आप ही वो हैं जिनका आप लोगों में इंतज़ार कर रहे हैं, वो मुझसे मोहब्बत करेंगे तो मेरे अंदर ये खूबसूरती आएंगी। आप हैं मोहब्बत के काबिल, आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे तो खूबसूरती आएंगी, उसको भी देखेंगी जो आपकी खूबसूरती नहीं देख पा रहा या देख पा रही। यह एक ज़माना है, आप जब इस बात को समझ जाएंगे ना कि आप ही वो कमाल हैं जो आपकी ज़िंदगी में होना था, तो आप यकीन करें लोगों के तो सिर्फ दिन आते हैं, अच्छे दिन आते हैं, आपका दौर आएगा, पीरियड होगा पूरा। आप हिस्ट्री को देखें, जिन लोगों ने अपने आप पे ईमान रखा है, रब पे ईमान रखा है, अपने मकसद की लगन और अपने अंदर ये अगन जलाए रखी है, उनका दौर आता है। दौर आपका भी आ सकता है, उसके लिए प्री रेक्विजिट्स हैं, वो क्वालिफाई किए बगैर नहीं आ सकता। यही रब है, यही कानून है, इसी के साथ एडजस्ट करना है। और फिर उसकी चाहत पे जब आप पूरे उतर गए तो सारी चाहते हैं आपकी खुद बहुत, आपकी चाहते ही इतनी चाहते हैं पूरी हो जाएंगी कि चाहत ही नहीं रहेगी किसी और चीज़ की। इसी थॉट के साथ अगला इंशाल्लाह शो भी शुरू करेंगे, 10 days ऑफ साइलेंट एंड सॉलिट्यूड। छोटी सी एक नज़्म, 4 शेर आपकी नज़र करते हैं और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो कमी कजी रह गई होगी इस शो में हम आगे पूरी कर लेंगे। आज का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन इतना खूबसूरत था कि अगर मेरी आंखें आप देख सकते तो आंखों में आंसू तशक्कुर के देख सकते हैं आप, शुक्रगुजारी के, इससे खूबसूरत कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता था। कुछ लोग और भी थे लेकिन कुछ लोगों को मैंने व्हाट्सएप पे भी लेना था, मुझे बात भी करनी थी, ये लोगों तक ये मैसेज भी पहुँचाना होता है, क्लिप्स भी बनते हैं इसके, मेरे दिल और दिमाग पर बहुत सारी चीज़ें एक वक्त में ऑपरेट कर रही होती हैं, उसके बीच में रवानी रखना, जहन के अंदर उस बात को पकड़ के रखना, उसको पहुंचाना, बाकी जो कमाल हमारा काम मेहरबान है वो लोग जो कि क्लिप्स बना के आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो बहुत कुछ मेरे दिल में और दिमाग में और आंखों में चल रहा होता है, उसके बीच में मैं कोशिश करके कोई चीज़ आप तक क्रिएट करके पहुंचाता हूं, तो उसमें कमी कजी ऑफकोर्स हो जाती है, तो उसके लिए आप माजत माफ़ कर दिया कीजिए, मैं माफ़ी बहुत कम मांगता हूं आप लोगों से, लेकिन आप लोग रोज़ हमारी कोई ना कोई बात माफ़ करते हैं और रोज़ किसी न किसी बात पर आपका दिल जो है वो दिल मोह लेते हैं हम, तो इसी खूबसूरत सी बात के साथ आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगले शो में इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है और उसके बाद वाला शो जो है एक पूरा शो रख लेते हैं और वो हम शो डेडिकेट करेंगे अपने इस लिसनर को, शो का नाम है टफ लव, द कॉन्सेप्ट ऑफ टफ लव, द एप्लीकेशन एंड द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, ठीक। तो ये भी शो आगे आने वाला है ताकि हम इसमें से बहुत सारी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने समझने की ज़रूरत है। जब तक जिंदा हैं, गोद से गोर तक, ऐसे नहीं कहा गया, माँ की गोद से गोर कब्र तक हमको रोज़ सीखना है, आखिरी सांस तक सीखना सिखाना समझना समझाना है और इसी तरह ज़िंदगी से निकल जाना है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। मैं और क्या कहूँ आपसे, क्या कहें उससे जो बात समझता ही नहीं, क्या कहें उससे कि जो बात समझता ही नहीं, वो तो मिलने को मुलाकात समझता ही नहीं, ठीक। वापस आते हैं जी आपके पास, एक बार फिर जुमला एक भी याद रह जाएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी, मेरी बदल गई, लोगों के लिए आसान, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए आसानियां पैदा करता है। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी, दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ, यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे, स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। तो हमें याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.

हमीदुद्दीन फराही साहब बड़ी प्यारी बात किया करते थे। उन्होंने जो दलाइल उन्निज़ाम किताब लिखी अपनी, उसमें उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। वैसे आप में से जो अरबी से कुछ आपका शगफ़ है, आपको लगाव है, तो उनकी किताबें अरबी में ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें। उस इंसान को जो अरबी में महारत थी ना, मैं हैरान रह जाता हूँ। उनका खुतबा है, अल्लाह ताला ने उनको एक ख़ास बलागत दी थी, अरबी ज़बान पर उनको अबूर था और इब्रानी पर भी उनको अबूर था असल में। तो मैं इसकी बात पहले मैं आपको बताता हूँ। बड़ी प्यारी बात उन्होंने की थी कि जिस रब ने एक एक उंगली की एक एक हड्डी बड़े निज़ाम से बनाई, और तुम लोग कहते हो कि कुरान में निज़ाम नहीं है। उसने अपने खिलाफ, जिसने पूरी कायनात का एक निज़ाम बनाया और हर चीज़ मुरतब की, उसने अपने कलाम को मुरतब नहीं किया। पहले सफ़े पे दलाइल निज़ाम, यानी कुरान में जो नज़म है, जो उसका एक उसकी एक तरतीब है, उसके क्या दलाइल हैं, उसके पहले सफ़े पे उन्होंने ये बात कही। मैंने कहा बाकी पढ़ने की, अब मैं पढ़ूँ क्या इसके बाद। तो उन्होंने जो अल्लाह ताला की हम की थी उस किताब में, बड़ी प्यारी हम थी। मुझे शायद थोड़ी सी याद है, मैं कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सानिउल खल्क़ी अला अहसन क़वाम व अकमल निज़ाम। ऐसे अल्लाह की हम जिसने तमाम खल्क को बनाया बड़े ही बेहतरीन खूबसूरत निज़ाम से और बहुत ही मुकम्मल कायम तरीके से, यानी एक एक जगह को सही तरीके से खड़ा करके। الواضع الاشياء في اجدر مقام, जो हर चीज़ को अपने सबसे मुनासिब जगह पर हर चीज़ को डालता है, एक एक सेल को मुनासिब जगह, एक एक न्यूरॉन को मुनासिब जगह, एक एक इलेक्ट्रॉन को मुनासिब जगह, एक एक सब एटॉमिक पार्टिकल को मुनासिब जगह, एक एक प्लैनेट को, एक एक गैलेक्सी को मुनासिब जगह पर डालता है, एक एक तिनके को, एक एक पत्ते को मुनासिब जगह पर डालता है। الواضع الاشياء في اجدر مقام, फिर कहते हैं वस्सलातु वस्सलामु। जब आप सुनते हैं ना वस्सलातु वस्सलामु, किसका जिक्र आने वाला है? रसूल, तो आप सोचोगे कहेंगे वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ना, वस्सलातु वस्सलामु अला अल मुअय्यद बिअबलगी कलाम। सलात और सलाम हो उस हस्ती पर जिसको अल्लाह ताला ने तायीद की अपने सबसे बलीग कलाम से। बिअबलगी कलाम व अरफकी मसाम, और सबसे नरम पैगाम से, दिल को नरम करने वाले पैगाम से। फिर कहते हैं वअला अस्हाबिही वअला आलिही वअस्हाबिहिल किराम, और उनके अस्हाब पर और उनके आल पर जिनकी बड़ी इज्जत हो। कबद्रिन तजल्ला मिन बैनिल गमाम, जैसे एक चांद निकला हो बादलों में से। इला मदन लयाली वल अय्याम, जब तक दिन चलें और जब तक रात चलें। फिर कहते हैं वहादल किताब अफरदनाहु अला दलाइल निज़ाम, और ये किताब मैंने ख़ास मुख्तस की है कुरान के निज़ाम पर। पहले फसफ़े में जो शायरी लिखी है ना कुरान, जो हमद की, उस हमद के अंदर ही सारी बात बयान कर दी। मेरा रब हर चीज़ अपनी जगह पर रखता है, और ये किताब मैंने शायद सोचा कि मैं लिख दूँ कि मेरे रब ने अपनी किताब में हर चीज़ अपनी जगह पर कैसे रखी, उस पर मैं ये किताब लिख। क्या क्या बात करते हैं वो भी, सुभान अल्लाह। तो मैंने ये खुतबा याद किया, इनके दो तीन खुतबे मैंने, वो हमद हैं, तो मैं खुतबा जब अरबी में देता हूँ तो मैं उनका खुतबा इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं जहाँ टेक्सास में मैं खुतबा देता हूँ, वहाँ अरब ज़्यादा हैं हमारे, तो मैंने खुतबा दिया। उनका एक और खुतबा है जो मैं आम आप लोग सुना, जो मेरे खुतबे सुनते हैं, मैं यूज़ करता हूँ उनका खुतबा। यू नो अल्हम्दुलिल्लाह खालिकुल वुजूद मिन अल-अदम व जाइलुन नूर मिन अद-दुलम, उनका खुतबा है। मैं इस्तेमाल किया तो एक इराकी साहब मेरे पास आए, والله يا شيخ من اين جئت بهذا هذه الخطبه كانت رائعه جدا جدا يعني برا عظيم خطبه تھا یہ کس کا خطبہ تھا لا منك آپ کا تو نہیں تھا میں نے کہا لا مني لا لا قطع السعودي مصري من كان سعودي تھے مثل قال قلت میں نے ان سے کہا ہندی ہندی كان ہندی لا ابدا لا قلت نعم كان ہندی हमारा एक हमारे हमारी हिस्ट्री में हमारे उलमा के जो कारनामे हैं ना, वो हम भूल गए हैं। इस खित्ते के उलमा, इस खित्ते में जो काम हुआ है ना, वो अंदाज़ा नहीं, हमें अंदाज़ा नहीं है, हमने उसको हाईलाइट नहीं किया। मैं गया था वहाँ पर, मुझे रोना आ गया था। मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी गया था कुछ साल पहले, अभी कुछ महीने में था पहले वहाँ पर, उनकी फैकल्टी से मेरी बात हो रही थी।
कुरान स्टडीज पर, क्योंकि उससे कुछ साल पहले मुझे एक बड़ा दिलचस्प नौजवान मिला, वहाँ पर सूडान से आया हुआ था, वहाँ PhD कर रहा था कुरान पे मलेशिया में गोमबाक में। मैंने कहा किस चीज़ पे PhD कर रहा हूँ, कहता हमीदुद्दीन फराइज साहब पे PhD कर रहा हूँ। उनकी 45 किताबें ढूंढ ढूंढ के जो अरबी में लिखी, जो कुछ उर्दू में लिखा, एक दो फारसी में भी लिखी, एक दो इंग्लिश में भी उन्होंने आर्टिकल लिखे, वो सारे कहीं ना कहीं से जमा करके उनमें पूरी PhD पे काम कर रहा था। और ये एक तो मुझे खुशी भी हुई और उदासी भी हुई कि यार मलेशिया में जाके एक सूडानी लड़का जो हमारी हेरिटेज है, हमारे उलमा की हेरिटेज है, उसको वो उस पर वहाँ पर वो काम हो रहा है, क्या हमारी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है और उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला उनको जजाए खैर दे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। अच्छा खैर, यहाँ पर जिन्नात के और इस बॉर्डर को क्रॉस करने के बारे में मैं एक बात बता दूँ, मैंने आपको बार बार समझाने की कोशिश की है, कुरान में जो सूरतें हैं ना उनका एक नस्क है, नस्क अरबी में कहते हैं पिरोने को भी, उसका भी एक लफ्ज़ है, जैसे आप जो जो स्वेटर बनाती है ना दादियाँ और नानियाँ, उसको भी नस्क कहा जाता है अरबी में। तो जो नस्क है ना आयात का तनासुक, उसके हिसाब से जब इस आयत को पढ़ें कि जिन से और इंस से कहा जा रहा है कि निकल जाओ आसमानों की तरफ, अब हुआ क्या कि 60s में मून लैंडिंग हुई, आपको पता होगा जब मून लैंडिंग हुई तो हमारे यहाँ एक ईमान का फितना बढ़ गया, वो अल्लाह ताला ने तो किया सी नहीं जा सकते, ये कैसे पहुंच गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा इन तनफुदू बिन अख्तार समावाती वल अर्द फनफुदू। उसके पहला बुनियादी जवाब पहले आप समझ लें, पहला बुनियादी जवाब, और वो ये है कि सूरतुर रहमान की जिस आयत से ये बात ली जा रही है वहाँ बात हो रही है क़यामत के शुरू होने की, क़यामत शुरू हो गई है। अब क़यामत शुरू हुई है तो अल्लाह ताला कहते हैं सनफ़रुगु लकुम अय्युहा थक़लान, क्योंकि इंसानियत समझती थी खुदा ने कायनात बनाई है, इतने बड़े बड़े अजराम बनाए हैं, इतने बड़े बड़े काम करता है, उसको मेरी थोड़ी सी रिश्वत से क्या मतलब यार, मैं इधर थोड़ा बहुत झूठ बोल लूँ, ये मैंने कुछ देख लिया, ये कुछ कर लिया, इससे उसको उसको बड़े काम है करने को, उसको कोई ब्लैक होल देखना होगा कहीं पे, उसको कोई वॉल्केनोज देखने होंगे, कोई स्टार गैलेक्सीज होंगी, कोई कितने बड़े बड़े उसको काम करने, मेरे काम में क्यों पड़ेगा, उसको और कोई काम नहीं है करने को। तो इंसान क्या समझता है कि अल्लाह ताला बड़े कामों में मसरूफ है, उसकी मैं ज़हनियत की मिसाल देता हूँ आपको, टीचर जब ना कभी कभी डेस्क पे बैठा ऐसे होमवर्क चेक कर रहा होता है, उसको जो जो भी है आसमानों और ज़मीन में वो उसी से उसी का तलबगार है, उसी से कोई ना कोई मुतालबा कर रहा है उसको, यानी एक लातादाद हद के लातादाद मुतालबे उसकी तरफ आ रहे हैं और वो हर वक्त हर आन किसी ना किसी ऐसे काम में लगा हुआ है जो सिर्फ वही कर सकता है, उसको शान कहते हैं, शान कहते हैं ऐसा काम जो कोई और ना कर सके। तो यानी इस आयत से शायद किसी को गलत फहमी हो कि वो बहुत ही मसरूफ है, कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, उसका जवाब आते अल्लाह ने खुद ही कह दिया, अच्छा तुम समझते हो मैं मसरूफ हूँ, सनफ़रुगु लकुम अय्युहा थक़लान, हम अपने आप को तुम सब के लिए फारिग करते हैं, अब तुम समझते हो मसरूफ हैं हम, चलो फारिग किया हमने अपने आप को तुम दोनों के लिए, तुम दोनों क्या थक़लान, थकील किस चीज़ को कहते हैं उर्दू में, थकील भारी चीज़ को, थक़लान तुम बड़ी भारी तादाद इंसानों की और तुम्हारी इतनी भारी तादाद जिन्नात की, तुम समझते हो इतने सारे हो, एक दो तो बीच में से फिसल के लॉ से निकल जाएंगे ना, कोई ना कोई तो खिसक के घुस जाएगा स्टेडियम के अंदर या स्टेडियम से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो कोई ना जहाँ क्राउड ज़्यादा होता है वहाँ चोरी का इम्कान ज़्यादा होता है, बचने का इम्कान ज़्यादा होता है, पुलिस किसी के पीछे जा रही है बड़ा क्राउड है तो वो क्राउड में घुस के निकल जाएगा। अस्तकलान कहते हैं बहुत बड़ी तादाद हो तुम, चलो हम फारिग करते हैं अपने आप को, तंजिया कलाम है कुरान में। फिर कहा अच्छा अब जब फारिग कर लिया तो इंसान को पता है पकड़ आने वाली है, जिनको भी पता है कि अब क्या होने वाला है, पकड़ आने वाली है, अब इंसान जब भाग के कहीं छुपने की कोशिश करेगा तो कहाँ जाएगा, ज़मीन में कहीं घुसेगा, कोई गार ढूंढेगा, कोई बेसमेंट ढूंढेगा, कहीं ढूंढेगा, कहीं मैं घुस जाऊँ, कहीं बच जाऊँ, जिन जो है वो कहेगा तुम लोग क्या घूमो छुपोगे, मैं कहाँ निकल रहा हूँ आसमान में। अब सुनना इस आयत को दोबारा, या माशर अल जिन्नी वल इंसी, दो ग्रोह जिन और इंस, इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़्तारिस समावाती वल अर्दी, तुमने आसमान में कहीं निकल के घुसना है, किससे कहा जा रहा है, जिनसे,
तुमने जमीन में जाके कहीं घुसना है, किससे कहा जा रहा है? इंसान से। चलो जाओ, कसर निकाल लो, भागना है भागो, देखते हैं कितनी दूर जाते हो। ला तन्फुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। फिर अच्छा, इंसान भाग के जा रहा है, कहीं दूर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगली आयत में कह दिया युरसलु अलैकुम शुआज़ुम मिन नार। ऊपर से हवाई फायरिंग हो रही है, मीटर बम गिराए जा रहे हैं, इधर भाग रहा है इंसान, इधर बम गिरा, उधर गिरा, उधर बम गिरा, इधर गया, इधर आया, उधर बम, जहां गिरता है, जहां धमाका होता है उसकी तरफ इंसान भागता है, उससे दूसरी तरफ भागता है, उसे दूसरी, वो भागने की कोशिश करे।